0: CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
1: CGMA 1320 AM Frequency Radio Program, TV Program, Rangla Punjab. I'm your host and friend, Sanju Sikka. Peshe khidmat hai aapki nazar mein aaj ke mukhya samachar. Sabse pehle, Donald Trump ne aaj kaha ki deal ban chuki hai boost karne ke liye US military ki presence Greenland mein. Denmark and Greenland ko bahut hi jald act karna padega. Deal ke hone se pehle, Danish Prime Minister ne kaha hai. US President Donald Trump ne aaj kaha ki Denmark jo hai wo apni US military presence Greenland mein uske liye samjhauta hone ke liye tatpar hai. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काफी महीनों की थ्रेटनिंग के बाद उन्होंने जब कह रहे थे कि वो नेटो एलाइज से इस आइलैंड को ले लेंगे. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया डील के बारे में. उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स को परमानेंट कंट्रोल मिलेगा सिक्योरिटी को लेकर और उनकी जितनी भी जरूरतें हैं ग्रीन लैंड में कम्प्लीटली एड्रेस किया. ऑल ऑफ उनकी जितनी भी यूएस की चिंताएं हैं सिक्योरिटी को लेकर उसके ऊपर काम उनका आसान हो जाएगा. उन्होंने ये भी साथ में ऐड किया अग्रीमेंट जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली शुरू कर देंगे उसको प्रोसेस करना और साथ ही साथ डेवलप करेंगे अतिरिक्त मिलिट्री की प्रेजेंस मिनरल रिच डैनिश टेरिटरी ग्रीन लाइन में. और इसके साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए वॉन के टोरंटो के पुलिस चीफ ने नए रेवलेशन हो रहे प्रोजेक्ट साउथ केस में जहां पर देखा जा रहा है कि पुलिस काफी करप्शन में खुद भी इन्वॉल्व रहती है. और डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया है मीडिया की प्रेजेंस दैट इज सीएनएन एमएस नाउ और पॉलिटिको व्हाइट हाउस में उनकी दखल अंदाजी उनके प्रेजेंस के लिए. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को कहा कि वो बार करने जा रहे हैं दूसरी और मीडिया आउटलेट्स भी व्हाइट हाउस में और कहा कि सीएनएन एमएस नाउ और पॉलिटिको को बैन तो लग चुका है. उन्होंने कहा कि मैं इनको अपने ऑफिस में बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता हूं. आई डोंट वॉन्ट देम हियर. और जो बैन जो है और भी अतिरिक्त उसमें आएगा. अपने ट्रुथ सोशल मीडिया में उन्होंने बैन के बारे में खुलासा किया कि ये फेक न्यूज बताते हैं और गलत न्यूज देते हैं. साथ ही साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्शन को लेकर फ्री स्पीच और फ्री प्रेस के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है इसलिए बंद हो रही है. और आइए बात करते हैं कि न्यू नैनो पार्टिकल स्टडी बताती है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में ऑफर करी अल्जाइमर्स डिजीज जिसमें कि दिमाग जो है याददाश्त भूलने लग जाता है और उसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च के बाद काफी इनकी टीम खुश है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की. और काफी 30 साल से काम कर रहे थे रिसर्चर एंड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सत्य ब्राताकर. मीडिया रिलीज में उन्होंने कहा कि उनको बहुत खुशी है कि कहीं पे वो आगे बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही साथ ब्रिटिश कोलम्बिया के कंजर्वेटिव एमएलए हैल्फर्ड रुस्तात और रेटीन अब ब्रिटिश कोलंबिया में कंजर्वेटिव पार्टी के साथ नहीं है. उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है. 25% ऑफ गाड़ियां जो उनको रोका गया ड्यूरिंग सिक्स नेशंस की इंस्पेक्शन जो कि उनको ऑफ द रोड लिया गया उनमें काफी खामियां पाई गई थी जैसे कि ब्रेक एक्सीडिंग जो एडजस्टमेंट की लिमिट है उससे ज्यादा लूज स्टेयरिंग फास्टनर और काफी ज्यादा इन व्हीकल्स में ऐसी खामियां थी जिसका चलना इनका सड़कों पर खतरे से खाली नहीं था. टीटीसी गो ट्रांसिट अप एक्सप्रेस वीकेंड्स पे बंद रहेंगे अगर आप उसे यातायात करते हैं तो जरा देख कर जाइएगा इनकी वेबसाइट. लॉस ऑफ स्टेयरिंग जी हजारों ही वॉक्स वेगन और ऑडी के व्हीकल्स को रिकॉल किया गया है कैनेडा में. और वॉक्स वेगन को रिकॉल किया गया 44,000 यूनिट्स जिसमें कि 2018 की एटलस और टिगुआन मॉडल्स इंक्लूडेड है एज वेल एज 2019, 20 और 21 के मॉडल्स ऑफ ऑडी Q3 SUV के. और साथ ही मिचिगन के सीईओ ने पोस्ट की थी अपनी पिक्चर्स AI फोटो अपनी फैमिली और जिसमें उन्होंने स्वेट शर्ट्स पहनी हुई है ड्यूरिंग विजिट टू कनाडा उस पर लिखा हुआ है लेक अमेरिका. बाद में उन्होंने माफी मांगी और पोस्ट को हटाया कि ये पिक्चर मैंने ChatGPT से बनाई थी. आइए बात करते हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी. उनका क्या कहना है. उनका कार्नी ने कहा कनाडा हमेशा ही मजबूत और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. अपनी फॉल सिटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का सरकार उनकी जो है काफी लेजिस्लेशन में बदलाव लेके आएगी अपनी नेक्स्ट सिटिंग में. और जब वॉशिंगटन की बात हुई तो कहा कि अपनी ट्रेड टॉक्स जो कि बिल्कुल नेगोशिएट नहीं हो पाए बिटवीन यूएस और कार्नी के दरमियान उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था. इसके साथ एक ही नेबरहुड है ऑन्टेरियो में हार्बर टोरंटो नहीं है जिसको कूलेस्ट सिटी की रैंकिंग में 9th रैंकिंग आई है. आप जान के हैरान होंगे खुश भी होंगे. और ये सिटी थी सेंट कैथरीन्स. इसके साथ ही साथ कार्नी अटेंड करेंगे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो कि न्यूयॉर्क में है अगले हफ्ते. टीनेजर एक लड़कियां थी जिनको चार्ज किया गया उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करके गो ट्रेन पे थी और दूसरे पैसेंजर्स को हैरस कर रही थी. मेयरल कैंडिडेट को चार्ज किया गया उस पर इल्जाम है थ्रेट किया ऑटवा के मेयर और प्रीमियर डॉगफोर्ड के ऊपर. LCBO लॉन्च करने जा रहा नया कैंपेन बाइंग लोकल एमिड ऑनगोइंग ट्रेड टेंशन जो अमेरिका के दरमियान चल रही है. ایل سی بی او کے جتنے بھی اسٹاف ہیں وہاں پر جو لوکل بنتی ہیں وائنرزی ان کو پروموٹ کریں گے اور ٹیسٹنگ بھی وہاں پر ایل سی بی او کے اسٹورز میں ہوگی. یہ تھا خبروں کا بلٹن آپ سب کی خدمت میں. دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ ریڈیو پروگرام رنگلا پنجاب میں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست انجو سکا.
0: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network, Toronto.
1: Host and host, Anjeev.

0: महल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 to 1000 बंदिया दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-679-9991।
0: स्वीट महल।
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cars, tailor transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, unit number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
3: HK Movers.
6: HK Movers.
7: ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
8: ਸਸਤਾ

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। ये कर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकते। सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आना कानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने की सूरत विच तुहाडे हकां दा रखवाला। मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला, 1800567HURT 4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010, 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर।
3: घर दा एक्सटीरियर होवे मजबूत ते लुक होवे कमाल दी, ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी। क्वालिटी वर्क, प्रोफेशनल सर्विस, बिल्ट टू लास्ट। मैनसूरी ते स्टोन वर्क, इंटरलॉकिंग फेंसिंग, पैडियो, रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहते हो, लैंडस्केपिंग, हार्डस्केपिंग, थोड़े एक्सटीरियर प्रोजेक्ट लई कंप्लीट सोल्यूशन ओरकल कंस्ट्रक्शन। रिपेयर तो लैके कंप्लीट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन तक ओरकल कंस्ट्रक्शन दा नाम याद रखना जी। अज ही कॉल करो 1-888-688-8956 या 416-474-6836। Oracle Construction, strong foundations, lasting results.
4: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
5: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा ढेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
4: सच्ची?
5: ओ मुच्ची,
4: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा ढेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
5: इना कोला सालां दा तजुर्बा।
4: हुन एड्रेस भी लिखा।
5: लै लिख ला, 1 Goodmark Place, इटोबी कोक, यूनिट 5।
4: कॉल 6477-06-9257, 6477-06-9257।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशन तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, इटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
2: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड कैनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर,
1: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
3: कैनेडा दी मन्नी परमानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शाह ट्रांसपोर्ट नू चाहिदे ने कुछ एक ड्राइवर्स। इमीडिएट हायरिंग हो रही है। ओनर ऑपरेटर्स टीम, कंपनी ड्राइवर्स टीम, सोलो ड्राइवर्स चाहिदे ने जी कंपनी दे वास्ते। कंसिस्टेंट लराडो टेक्सास डे रन्स, स्टेडी माइल्स अते रिलायबल काम पूरा साल दिता जावेगा। वधेरे जानकारी लई कॉल संदीप 416-903-8390। शाह ट्रांसपोर्ट दा यार्ड लोकेटेड है 5758 Dixie Road, intersection 401 and Dixie. Number ek vari phir to 416-903-8390.
4: ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਮੇਪਲ ਵਨ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਬਾਥ ਇੰਕ ਗੂਗਲ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ, ਕਲੋਜ਼ਟ, ਬਾਰ, ਟੀਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫਿਸ, ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਮੇਪਲ ਵਨ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਬਾਥ ਇੰਕ 173 ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਲੇਵਾਰ, ਯੂਨਿਟ 34, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। 905-458-0075, 905-458-0075। मेपल वन किचन एंड बाथ इंक।
5: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपना साथी बनाओ।

0: देखे तो दो चप्पेरा मान खिच के दे बट के तेरे बूथे ते तू करे आ
1: यार अल्लाह भी मता आ गया
0: तेन तो हुन लव दिखाऊंगी.
2: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मन

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

नगरीना दिखाओ, शैतान सिरे के हम परीना दिखाओ, ये आग ऐसी है इस सावन की झड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तू गई।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: We are the sounds of the streets.

ऐसो साल भी नहीं भूलते। मैं शुरू होकर ये मुहिम मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाकर मारा। जनरल

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

वफा तो बेकदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को झेल हुई जुर्म में इजाफा है हम आना के देर हुई इस कलम से वादा है।

नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, देखी दोपहर नहीं, रातों का राजा मैं, हमारा ये देर हुई पर अपनों से वादा है, इस जंगल को शेर नहीं अंधेरा सिखाता है।

0: जाना तुम जो मदिरा से बरो मैं खाना लगती हूँ।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एक्स्ट्रा सर्विस, टेक योर टाइम शारी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा साम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर कर डाल, मैं हूँ तेरे साथ साथ, तू है मेरे संग संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे, बेबी ऐसे है मत हमें क्या मत, तुम मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

पटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: पावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Shahar di awaz, dilan di pukar. Your city, your voice, your radio star. Aagya fer to ek var, tuhada apna CJMR 1320. CJMR 1320.
2: चावला एंटरटेनमेंट बड़े माण नाल पेश करदे ने तुहाडा अपना रेडियो शो एशियन विजन। दिलां नूं रखो तुसीं संभाल के, आ गया जे हरमन प्यारा आरजे अर्श चावला।

0: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
1: HK Movers,
0: local and long distance, we also ship cars, tailor transport and moving services.
1: For service with a smile, give us a call.
0: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
1: 416-524-6704.
0: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
2: Long distance moving specialist,
0: HK Movers.
3: HK Movers.
4: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 ईव नजरो जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स and travel.
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और $10.05 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: ब्रैम्पटन वाले तैयार हो जाओ बुलट मोटरसाइकिल जीतने लई क्योंकि तुहाडे शहर विच नवे ग्रोसरी स्टोर अनाज मार्ट दी हो रही है ग्रैंड ओपनिंग
2: आज ही अनाज मार्ट ते आओ $100 दी शॉपिंग करो ते लकी ड्रॉ विच एंट्री पाओ ते तुसी जीत सकदे हो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल एलईडी टीवी एयर फ्रायर ते होर भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस
1: विजिट अनाज मार्ट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42A ब्रैम्पटन कॉल 905-928-8557
3: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320.
4: CJMR 1320.
3: The voice of the city.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: इंतजार हुन खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Your home for community, CJMR 1320.

0: encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: स्मार्ट बिगड़ी डॉट।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320